0: ये आवाज थी अली जफर की।
1: मैं हूं आबिद अली बेग, आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम आरटीएच के रेडियो 3 पर। क्या आप मुलाजमत की तलाश में और सोच रहे हैं कि आपको रोजगार से मुतालिक रहनुमाई या मदद कहां से मिल सकती है? लेबर डिपार्टमेंट पूरे शहर में 10 जॉब सेंटर्स चलाता है, जहां मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को बिल्कुल मुफ्त खिदमत फराहम की जाती हैं। आप किसी भी जॉब सेंटर में ताज़ा तरीन खाली आसामियों की मालूमात हासिल कर सकते हैं। आप वहाँ मौजूद एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर से मुलाकात करके अपनी रोजगार की जरूरियात पर बातचीत भी कर सकते हैं और ऐसे खसूसी रोजगार प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं जो आपकी मुलाजमत हासिल करने की सलाहियत को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। खसूसी तौर पर आप रेशियल डाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं, जिसके तहत नस्ली अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को रजिस्टर्ड सोशल वर्कर के जरिए केस मैनेजमेंट के अंदाज में एक ही जगह तमाम रोजगार मावन खिदमत फराहम की जाती हैं। लेबर डिपार्टमेंट अंग्रेजी और चीनी जबान में खिदमत फराहम करता है। अगर आप अंग्रेजी या चीनी नहीं बोलते तो महकमा आपके लिए मुफ्त तर्जुमान की सहूलत का इंतजाम भी कर सकता है। मजीद मालूमात के लिए लेबर डिपार्टमेंट की इंटरेक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस की वेबसाइट पर नस्ली अकलियतों के लिए मखसूस सफ़ा मुलाहिज़ा करें www.jobs.gov.hk/em या इंटरेक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। हाल ही में एक ऐसा स्टोर खुला है जहां शौहर फरोख्त होते हैं और ख्वातीन अपनी पसंद का शौहर मुंतखब करके खरीद सकती हैं। स्टोर के सदर दरवाजे पर चंद हिदायत आवेजा हैं, जिसमें नुमाया हिदायत है कि आप इस स्टोर में सिर्फ एक बार दाखिल हो सकती हैं। ये स्टोर 6 मंजिला है और जो जो खरीदार ऊपर की तरफ जाएंगी मर्द की खसूसियात में इजाफा होता जाएगा, मगर आप किसी एक मंजिल से सिर्फ एक शौहर पसंद कर सकती हैं या फिर उससे ऊपर की मंजिल में जा सकती हैं। नीचे की मंजिल में वापसी की ममानियत है। आप इस स्टोर की विजिटर नंबर 999,995 हैं। एक खातून शौहर की खरीदारी के लिए स्टोर में जाती है।

है जहाँ पहली मंजिल पर दर्ज है, यहाँ मर्द बरसरे रोजगार हैं और खुदा से मोहब्बत करते हैं। दूसरी मंजिल पर उसने देखा, लिखा था, यहाँ मर्द बरसरे रोजगार हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं और बच्चों से भी। तीसरी मंजिल पर कुछ यूं लिखा देखा, यहाँ न सिर्फ मर्द बरसरे रोजगार खुदा और बच्चों से मोहब्बत करने वाले हैं बल्कि नहायत हसीन और जमील भी हैं। वाह, औरत ने वहां रुककर सोचा, मगर फिर कुछ और सोचकर और आगे यानी चौथी मंजिल पर जा पहुंची। यहाँ लिखा था, यहाँ के मर्द बरसरे रोजगार खुदा और बच्चों से मोहब्बत करने वाले हसीनों जमील होने के साथ साथ घरेलू कामकाज में भी मदद करते हैं। ओ खुदाया, उस औरत ने सोचा, इससे अच्छा मर्द तो हो ही नहीं सकता। मगर फिर भी वो पांचवी मंजिल की तरफ चल पड़ी जहां लिखा था, यहाँ मर्द बरसरे रोजगार खुदा और बच्चों से प्यार करने वाले हसीनों जमील घरेलू कामकाज में मददगार होने के साथ रूमानी तबीयत के हामिल भी हैं। औरत का दिल चाहा कि यहीं रुक जाए, मगर खूब से खूब तर की तलाश उसे छठी और आखिरी मंजिल पर ले गई। जानते हैं वहां क्या लिखा देखा? वहां लिखा था, आप इस फ्लोर की विजिटर नंबर 999,995 हैं। इस फ्लोर पर कोई मर्द नहीं है। यहां से आप सिर्फ बाहर जा सकती हैं, जो इस बात का बयान सबूत है कि औरत का मुतमईन होना नामुमकिन है। आपके यहां आने का शुक्रिया। एहतियात के साथ बाहर तशरीफ ले जाइए एंड हैव अ नाइस डे।

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अताउल्लाह खान सखेलवी। आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने मेजबान आबिद अली बेग के साथ।
1: और अब इब्ने इंशा की ये हस्ती मुस्कुराती तहरीर, करने क्या आए थे और क्या कर चले। आजकल कोई भी शख्स वो काम नहीं कर रहा जो उसे फिल असल करना चाहिए, बल्कि किसी और ही मैदान में उलुल अजमी के घोड़े दौड़ा रहा है। सौदागर चर्म है तो मुशायरे की सदारत करता है, डॉक्टर या सलूतरी है तो हज और जकात के मसाइल पर खामा फरसाई करता है, पान फरोश है तो बयान देता है कि हमारे मुल्क में फौलाद साजी का कारखाना फौरन कायम होना चाहिए, और निकाह ख्वां है तो जदीद मुआशी नजरियों पर पुरमग़्ज़ तकरीरें करता है। गुज़िश्ता हफ्ते के मज़मून में हमारे दोस्त जमीलुद्दीन आली ने नाशरों का शिकवा किया है कि वो सनतकार बन गए हैं, बजाय इसके कि साफ सुथरा अदब पैदा करें वो साबुन बनाने लगे हैं, और कौम के दर्द की दवा किताबों के जरिए करने के बजाय खांसी बुखार और गठिया की दवाओं के कारखाने लगा लिए हैं। एक नामी ग्रामी पब्लिशर पौन सदी तक किताबें और किस्से छापते रहे, लेकिन उनका कलेजा तब ठंडा हुआ जब उन्होंने ठंडी बोतलों का एक प्लांट लगा लिया। आजकल वो ठंडा मीठा अदब कम, बर्फ में लगी बोतलें ज्यादा बेच रहे हैं। हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि ये कारखाने इन लोगों ने इसलिए लगा लिए हैं कि किताबें छापने में वाफिर मुनाफा उनको हुआ था, जैसा कि आली साहब का बयान है या जैसा कि ये लोग खुद कहते हैं, किताबों की अशात घाटे का सौदा है, इससे तो सब्जी बेचना अच्छा। देखा जाए तो अदीब भी यक फने नहीं है, एक तरफ शायर मौजूद बयान है और दूसरी तरफ किसी दफ्तर में क्लर्क हैं। वजह शोरत तनकीद है, वैसे कोयले की टाल पर मुंशी हैं। तारीख गोई में जवाब नहीं और बनिए से दूसरी ही तारीख से कर्ज लेना शुरू कर देते हैं। वैसे तो अदीब और पब्लिशर दोनों अदब की बेलौस खिदमत के मुद्दई हैं, लेकिन जाने क्या बात है, एक बेलौस खिदमत करते करते और गरीब हो जाता है और दूसरा, खैर अमीरी गरीबी तो लोग कहते हैं कि कुदरत की तरफ से है। यहाँ बहस कारोबार की थी। उर्दू के एक मशहूर पब्लिशर तो किताबें भी छापते हैं, मुर्गी अंडे का कारोबार भी करते हैं। हमें कभी मालूम ना हो सका कि उनकी असल दिलचस्पी की चीज कौन सी है, उनके नजदीक पोएट्री मुकद्दम है या पोल्ट्री, मुर्गी पहले या अंडा। अब तो वो अदब ही को नहीं, दुनिया के हर मसले को मुर्गी के नुक्ते नजर से देखते हैं। एक अखबार वाले ने पिछले दिनों उनका इंटरव्यू लिया था, कुछ इस किस्म का था, जनाब कौम को किस किस्म के अदब की जरूरत है, मुर्गी खाने के अदब की। आपको इकबाल की कौन सी किताब सबसे ज्यादा पसंद है, बांगे दरा। मिल्लत बैजा के लिए आपका क्या पैगाम है, हर फर्द सुबह नाश्ते में दो अंडे उबले हुए खाए, पीआईए वालों को लीजिए बाकमाल लोग लाजवाब परवाज, लेकिन जहाज उड़ाते उड़ाते ये भी मुर्गियां पालने लगे। अरे कुछ पालना ही था तो शाहीन वगैरह पाले होते। ये बात अलबत्ता है कि उकाब या शाहीन अंडे नहीं।

गीत में अहमद रुश्दी का साथ दे रही थी नजमा नियाजी। लिबर्ट डिपार्टमेंट और हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुश्तरका तौर पर हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपो एंड कैरियर फेयर 2026 का इनेकाद कर रहे हैं, जो 23 और 24 मई को हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के अराइवल हॉल लेवल 5 में मुनाकिद होगा। हवाबाजी की सनत से वाबस्ता तकरीबन 40 इदारे मुख्तलिफ तालीमी पसमंजर रखने वाले उम्मीदवारों के लिए मुलाजमतों की वसी अकसाम पेश करेंगे। अगर आप रोजगार के मुतलाशी हैं और हवाबाजी के शोबे में मौके हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस कैरियर एक्सपो में शिरकत का मौका जरूर हासिल कीजिए। तकरीब की तफसीलात और औकात कार के लिए बराए कर्म मुलाहिज़ा कीजिए www.jobs.gov.hk।